कुछ लोगों को आपने देखा होगा जिंदगी मुनज्जम है, पढ़ना लिखना उठना बैठना, अच्छी अच्छी आदतें लाते हैं अपने अंदर, छोटी छोटी बातों पे अपने आप को बिगड़ने नहीं देते, कंट्रोल रखते हैं अपने अंदर। ये क्यों रखते हैं, कहाँ से आता है ये? इल्म से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, पढ़े जाओ किताब में क्या फ़र्क पड़ता है। मैं बोले जाऊँ तकरीरें किए जाऊँ, तकरीरें करने से थोड़ी इल्म अमल आता है, अमल आता है कंट्रोल से आता है। छोटी छोटी चीज़ों में कंट्रोल करें, जूते उतारें साथ उतारें, कपड़े कहीं रखना है मुनज़्ज़म रखें, चीज़ों को अपने ऑर्गेनाइज़ करें, अपनी ज़िंदगी के अंदर नज़्म व ज़ब्त लेकर आएँ। हर चीज़ का पता हो क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, करना कैसे है इस काम को। ये नज़्म व ज़ब्त होगा तो हमारी तादाद यहाँ पे पाकिस्तान में 10-15% है, ये बहुत है। 1:10 के रेशो पे तो ये तो कुछ भी नहीं है। सैयदुश्शोहदा का लश्कर कह रहा था ये हज़ार हैं, ये क्या है, तो इनको तो हम अभी उठा के फेंक देंगे। ये पाकिस्तान है 1:10 के रेशो पे, तो हाँ तो मैं जीत ही जीत है हमारी, लेकिन मुश्किल ये है कि हम ऑर्गेनाइज होंगे तो जीत है, वरना जीत नहीं है। स्टेपनी में हवा भरे जाने से थोड़ी गाड़ी तो चलती है टायर के ऊपर, इस टायर पे चलती है ना उस टायर के ऊपर। तो मुझे और आपको इस टायर को मजबूत करना पड़ेगा कि भाई ये कैसे होगा। इसके लिए कंट्रोल चाहिए, इसके लिए ख्वाहिशात पे कंट्रोल चाहिए, इसके लिए दिमाग पे कंट्रोल चाहिए। छोटी छोटी प्रैक्टिसेस से ये काम हो सकता है। आदतें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अच्छी आदतें लेकर आओ, अच्छी आदतें। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लीजिए, जैसे अभी मसलन छोटी आदतों की बात हो रही है, रात को सोने से पहले वज़ू करो, कौन सी दुआएं पढ़ते हैं दुआओं को मुनज़्ज़म करो, कुरान करीम रोज़ाना कितना पढ़ना है इसको मुनज़्ज़म करो, नमाज अव्वल वक्त पढ़नी है कैसे पढ़नी है, कुनूत में क्या पढ़ना है, दुआ इमाम के लिए पढ़नी है कौन किस वक्त में पढ़नी है, सब चीज़ें ज़िंदगी में मुनज़्ज़म करें। जब हम ज़िंदगी में छोटी चीज़ों को मुनज़्ज़म करते हैं, खुदा हमारी ज़िंदगी की वो चीज़ें मुनज़्ज़म करता है जो हमारे हाथ में नहीं है। बच्चों की तरबियत मेरे हाथ में नहीं है, मैं कुछ कर सकता हूँ बाकी बहुत कुछ नहीं कर सकता। खुदा ऐसी चीज़ों को संभाल लेता है जो मेरे हाथ में नहीं होती हैं। कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, खुदा ने फरमाया तुम अपने ज़ाहिर को सही करना चाहते हो, बातिन को सही करो। तुम अपने बातिन को सही करोगे, तुम्हारे ज़ाहिर को मैं सही करूँगा। तुम इंसानों के साथ ताल्लुकात अच्छे चाहते हो, तुम मेरे साथ ताल्लुक सही करो, मैं तुम्हारे और इंसानों के ताल्लुकात को संभाल लूँगा। किसी के दिल पे मैं हुकूमत कर सकता हूँ? भाई किसी का दिल है, मेरे हाथ में थोड़ी है, वो अब उसका दिल है जो चाहे करे। खुदा कह रहे तुम्हें इस पे हुकूमत चाहिए ना, ये भी मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम मेरे साथ ताल्लुक सही करो। तुम्हारी ड्यूटी नहीं है कि लोगों के दिलों में झांक के देखो ये मुझे क्यों नहीं चाहता, ये मेरा दोस्त है या नहीं है, तुम इसको भूल जाओ। तुम सिर्फ एक काम करो, तुम मेरी तरफ देखो, तुम आखिरत देखो, तुम्हारी दुनिया मैं संभालूंगा। तुम बातें सही करो, तुम्हारा जाहिर मैं संभालूंगा। तुम मेरे साथ दोस्ती करो, बंदों की मोहब्बतों को मैं संभाल लूंगा, उनको मसला नहीं। हम मुनज़्ज़म हो जाए ना तो बहुत सारे काम हमारे हल हो जाएंगे, बड़ी जगहों तक पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल। एक जो कमाल नहजुल बलागा के अंदर हुआ है, अब मैं इसमें मज़ीद तफसील में ना जाऊँ, ये जो चैप्टर है अक्ल थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल, ये चैप्टर ये समझ लें, ये मुझे जो अभी तक समझ में आ रहा है, मतलब मैं हमेशा ये अर्ज़ करता हूँ, अगर मुझसे कोई कहे भाई तुमको तालिब इल्म बने हुए 33 साल हो गए, एक लफ्ज़ बताओ जिसमें इस्लाम की जीत है, मैं इस्लाम पर अमल करूँगा, एक लफ्ज़ बताओ, तो मैं कहता हूँ कंट्रोल, कंट्रोल। अच्छा, अब कुछ चीज़ें मुझे समझ में आना शुरू हुई कि मसलन इससे कुछ होता है, मैकेनिज़्म समझ में नहीं आता था मैकेनिज़्म, आहिस्ता आहिस्ता मैं दर्क कर रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है अक्ल नज़री अक्ल अमली थ्योरेटिकल अक्ल प्रैक्टिकल अक्ल, इसमें मैकेनिज़्म है, इसमें मैकेनिज़्म है। और उस मैकेनिज़्म को सिर्फ अभी जितना मैं समझ पा रहा हूँ उसकी आपकी खिदमत में सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा, ये जो अक्ल प्रैक्टिकल अक्ल है इसको कुरान और हदीस ने कल्ब कहा है, इसको कुरान और हदीस ने कल्ब कहा है। कल्ब जहाँ कहीं कुरान और हदीस में कल्ब आया है, शायद जो मैं अभी तक समझ पा रहा हूँ 80-90% से ज़्यादा मतलब ये प्रैक्टिकल अकल है। इसका मतलब थ्योरेटिकल अकल नहीं है, इसका मतलब मंशा ख्वाहिशात भी नहीं है। मैं हम लोग समझते हैं कल्ब यानी दिल, और दिल का मतलब हो गया ख्वाहिशात, नहीं ये वो नहीं है। कल्ब हमारी ज़िंदगी की हमारी अक्ल का वो हिस्सा है जो काम करवाता है, अमल करवाता है। मिसाल के तौर पर इसको इस तरह से अर्ज़ करूँगा आखिरी जुमलात में,

एक सिक्का अंदर नहीं जाएगा, एक सिक्का कब्र में जाएगा, एक जमीन का टुकड़ा कब्र में जाएगा मेरे साथ, कुछ नहीं जाएगा। इनका मुझसे क्या ताल्लुक होगा, इनमें से किसी चीज का मुझसे कोई ताल्लुक। 1 करोड़ आदमी मेरे फॉलोअर हैं, ये मेरे साथ कब्र में जाएंगे, मेरे साथ बरजख में उठेंगे, मेरे साथ इतना सा भी नहीं है। इस दुनिया से मेरा क्या ताल्लुक है, इसकी कोई चीज मेरे साथ वफा नहीं करती है, इसकी कोई चीज मेरे

बैग, देर नहीं लगाएगा, सारी दुनिया को यूं छोड़ेगा और कहेगा मौला मैं हाजिर हो गया। इतना आप देखेंगे, इतना इसका बिजनेस, इतना इसकी इमारतें, इतना इसका कुछ, सब कुछ। वो कहेगा नहीं, मैंने ये सब किया था आखिरत के लिए। आखिरत का मालिक पुकार रहा है, अब क्या? जब वो पुकार रहा है तो मामला खत्म हो गया। अब सिर्फ एक जुमला है, लब्बैक, मामला खत्म। वो जो करबला के मैदान में खड़े थे, वो यूं आशिक हो गए सैयदुश्शुहदा के कि भाई हमने जिंदगी गुजारी थी आखरत के लिए, आखरत का मालिक खड़ा है, आखरत का मालिक खड़ा है, वो कह रहा है कि मैं ये करना चाहता हूं। उनका सब हाजिर है, हम आपके लिए हाजिर हैं। अब वो आखरत का मालिक के मौके पे कहता है कि देखो तुमने जितना मेरा साथ देना था ना दे दिया, अब तुम लोग जाओ। वो आखरत का मालिक एक मौके पर आकर कहता है तुमने जितना मेरा साथ देना था ना दे दिया, अब जाओ। क्यों जाए मौला? क्या अब तुम्हारी इन लोगों को कोई दुश्मनी नहीं है, तुमसे नहीं लड़ रहे, मुझसे लड़ेंगे, मुझे छोड़ो और जाओ। अब इमाम क्या कह रहे हैं? फरमा रहे हैं कि अगर कोई मेरा आशिक नहीं है, जन्नत का आशिक है, तो अब मामला ख़त्म हो गया। अब जाओ अपने अपनी जिन चीज़ों से इश्क किया है उनके साथ बैठो। अगर जन्नत के इश्क में यहाँ तक आए थे, जन्नत मैं दिला दूंगा, जन्नत तुम्हें मिल जाएगी, यहाँ से तुम्हारा हमारा रास्ता जुदा हो गया। लेकिन वहाँ जो बैठे थे उन्होंने कहा कि मौला ना हम जन्नत के बागों के लिए आए, ना हम जहन्नम के खौफ से आए, आपकी मोहब्बत में आए, आपकी मोहब्बत में आए, आपकी माँ के एहतराम में आए, बस हम जन्नतों के लिए थोड़ी आए। जन्नतें चार नमाजें पढ़ने से मिल जाती हैं, चार रोजे रखने से मिल जाती हैं, जन्नत के लिए आपके पास क्यों आते? हम आए आपके पास जान देने के लिए, हमें जन्नत दीजिए, जन्नत के बाद चाहिए। अब तुम्हें जन्नत के बाद क्या चाहिए? अब यहाँ पर जो हर शहीद था उसे कुछ चाहिए था, हर शहीद को कुछ चाहिए था। मसलन एक शहीद ने कहा मौला क्या ऐसा हो सकता है कि जब मैं मरूं तो मेरा सर आपके जानों पर हो? हर शहीद को कुछ चाहिए यहां पर, लेकिन जो भी चाहिए वो हुसैन का चाहिए, जन्नत का नहीं चाहिए, जो भी चाहिए हुसैन का चाहिए। एक कहता है मुझे सैयदा का साया चाहिए, मुझे उनकी लुत्फ चाहिए, उनकी इनायत चाहिए। एक कहता मुझे सैयदुश्शुहदा का जानू चाहिए, मैं मरूं मेरा सर उनके जानू पर हो। अब हर एक की अपनी अपनी ख्वाहिश है ना। एक है कि जिसका ताल्लुक अरब कबीलों से भी नहीं है, अरब कबीलों से भी दूर है, लोग उसको इज्जत से नहीं देखते, उसने सारी जिंदगी इन तमाम चीजों को बर्दाश्त किया सिर्फ एक इंतजार में, कभी तो वक्त आएगा मेरा खून मेरे मौला के ऊपर कुर्बान हो। अब जब आशूर का दिन आया तो वो मुश्ताक कि अब मेरा वक्त आया कि मैं कुर्बानी दूं। इमाम ने सारे गुलामों को बुलाया और कहा तुम सब लोग चले जाओ, हम लोग गुलाम आसानी के वक्त में रखते हैं। अबू जर का गुलाम है, अबू जर के इश्क को देख चुके हैं, जॉन हजरत अबू जर के गुलाम थे, हजरत अबू जर ने सैयदुश्शुहदा को दिया था, इन्होंने देखा था मेरा मौला अबू जर कैसे इमाम हुसैन के आगे पीछे घुमा करता था, बस आरजू करते थे काश मेरा खून हुसैन के काम आ जाए। जब आशूर के दिन सैयदुश्शुहदा ने फरमाया जॉन तुम भी जाओ, तो रोने लगे और कहा मौला मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ जिंदगी गुजारूंगा, मैं आपके ऊपर कुर्बानी दूंगा। सैयदुश्शुहदा किसी गुलामी गुलाम को क्यों ये जहमत देते? वो अपने अपने नज़दीकी तरीन दोस्तों को कह रहे थे चले जाओ चले जाओ, तो गुलाम की जहमत क्यों बर्दाश्त करते? इसरार किया कि नहीं जॉन तुम चले जाओ। अब जॉन ने देखा कि एक ही रास्ता है इमाम को खामोश करने के लिए, राजी करने के लिए, कहा मौला क्या नहीं चाहते मैं सियाह हो सफेद हो जाऊं? जब तक कहा मैं जान देना चाहता हूं, इमाम ने कबूल नहीं किया। जब मैं कहा मौला मैं आपसे कुछ लेना चाह रहा हूं, अब कबूल कर लिया, काम देंगे तुम्हें। गए जंग की मैदान में गिरे, खुशकिस्मती और सआदत किसी की क्या होगी जॉन से बढ़कर, खुद सैयदुश्शुहदा तशरीफ लाए, जॉन के सर को अपने जानों के ऊपर रखा, जॉन के चेहरे से मोहब्बत का हाथ फेरा। ये क्या वकाबात है जो किसी को

ये तराना उस शफीक रहबर और पैकर इल्म व अमल के नाम, जिसने जिंदगी भर हमारी उंगलियां थामे रखी और रुखसत होते हुए अपने लहू से हमारी बका की

क्या कह के बनाया गया था इन अड्डों को? आपकी हिफाजत के लिए बना रहे हैं। एक्चुअली यही सबसे ज़्यादा ख़तरे का सबब है। और ये जो अड्डे जिनको हिफाजत के नाम पे बनाया गया था, ये दावे इस हद तक खोखले हैं कि ये खुद अपनी हिफाजत नहीं कर पाए, खुद अपनी हिफाजत नहीं कर पाए। तो जाहिर सी बात है कि जब वो अपनी ही हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये जिन लोगों की हिफाजत के लिए बनाए गए थे, उनकी हिफाजत क्या करेंगे? दुनिया के हालात बदल रहे हैं और बहुत तेज़ी से। इससे पहले मुख्तलिफ जिहाज से ये बात आपकी खिदमत में पेश की है कि दुनिया में दो सिस्टम है, एक निज़ाम अदल है और निज़ाम जुल्म। जंग से पहले तक निज़ाम जुल्म सर चढ़ के बोल रहा था और उसने पूरी दुनिया को ये साबित किया था कि हम ही अदल के परचमदार, लेकिन वो जुल्म करता था और सबको यूज़ करता था, इस्तेहसाल करता था। लेकिन अभी ये समझ में आ गया कि अमेरिका के ये जो नारे हैं वो सबके सब खोखले थे, झूठे थे। मसला सिर्फ इतना नहीं कि खोखले झूठे थे, अब इत्तेफाकन वो नारे अमेरिका और इसराइल के लिए मुसीबत बन के रह गए, क्योंकि लोगों को तवक्को थी इनसे, ह्यूमन राइट्स की, अदल की, इंसाफ की, ये सारी बातें की थी। आम पब्लिक की तो गलती नहीं होती, उसको तवक्को थी, उसको उम्मीद थी। फिर ये झूठ बोल के साबित करते थे कि भाई हमने मसलन फौज फला मुल्क में भेजा इसलिए कि वहाँ पर इंसाफ कायम हो, हमने फला जगह भेजा ताकि हम जंग रोकें। ये झूठ बोलते रहे, पब्लिक समझती थी कि ठीक है ऐसे ही होगा, पब्लिक उसको सही समझती रही। नरस किया ना कि हर आदमी तो नहीं समझता था, अलबत्ता ये बातें तो हम लोगों के लिए वाजे थी कि ये सिर्फ इस्तेहसाल है। ना इन्हें कितने मुल्कों को बर्बाद कर दिया, तालाश कर दिया, उजाड़ दिया, सिर्फ ये कह के कि हम अदल व इंसाफ के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सी पब्लिक थी कि जो सिर्फ मीडिया पर भरोसा करती है, वो समझती रही कि हाँ ये सही है, ये सही है, ये सही है। अब खुल के सामने आ गया अंदर की बातें, ये सारे दावे खोखले थे। और एक दो चीज़ें नहीं हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं बनवाने दलील कि जिसका इनकार कोई नहीं कर सकता, या दलील हैं या उसकी बुनियाद पे उसके असरात। उसमें एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो पोप की आवाज़ है, उसको दबाने की कोशिश की गई, रिएक्ट उसका जो आया। इत्तेफाकन ट्रंप ने जो उसके ऊपर रिएक्ट किया वो ज्यादा वसीला बन गया कि उस आवाज को दूर तक पहुंचा, हकीकत को खोलने के लिए ज्यादा वसीला बन गया। दूसरी चीज की ईरान और वेटिकन के दरमियान कुछ सेमिनार हो रहे हैं, हुए हैं और आगे भी होंगे, कि जिसमें इंटरनेशनल लेवल पे इंसाफ पे गुफ्तगू हो रही है। ये तारीख इंसानियत दुनिया का एक बहुत बड़ा मोड़ है कि जहां पे ईरान और वेटिकन साथ में बैठे और इस पे डिस्कस करें कि दुनिया में इंसाफ कैसे हो। अभी तक तो अमेरिका जिम्मेदारी लिया था ना कि भाई इंसाफ के जिम्मेदार हम हर जगह इंसाफ करेंगे, और ये झूठ बोल बोल के ये झूठ को पहचानने की कोशिश करें। ये हर लेवल पे बोला जाता है ना। तारीख इस्लाम में कितने ऐसे लोग गुजरे हैं कि जो अव्वल दर्जे के बेदीन थे, लेकिन लोगों के सामने प्रेजेंट करते थे कि हम ही तो दीनदार हैं, दीन का परचम तो हमारे ही हाथ में। हत्ता मौलाए कायनात के मुकाबले में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में। तो ये झूठे परचम लेने वालों को पहचानने की सलाहियत भी हमारे अंदर होनी चाहिए, और इतनी हिम्मत हो कि जब हकीकत खुल के सामने आए तो हम गलत को गलत कह सकें, सही को सही कह सकें। आज ये चीज़ खुल रही है, अमरीका की हकीकत लोगों पर सामने आ रही। अफ्रीका से आवाज़ उठती, अफ्रीका के हालात आपको मालूम है, किस तरीके से अमेरिका उनका इस्तेहसाल करता रहा, उनके जो मनाबे हैं उन चीज़ों को, मादन है उनको लेता रहा। बहुत कुछ अफ्रीकियों के साथ मजालिम हुआ कि ईरानी, उन्होंने ईरानी कौम के नाम पैगाम दिया कि ग़ुलामी का निज़ाम ख़त्म हो चुका है, ये इंसाफ की बारिश है कि जो बरस रही है। ईरान दुनिया में अदल व इंसाफ की निशानी और उम्मीद दरवाके बन चुका है, लोगों को ईरान से उम्मीद हो गई है कि हमको अगर अदल व इंसाफ। हमने इससे पहले एक बात अर्ज की थी कि जंग से पहले अमेरिका ने जिस जगह पे ईरान को खड़ा किया था, आज ईरान ने ला के उसी जगह पे अमेरिका को खड़ा कर दिया, है ना। हम ईरान तन्हा था, लोग सपोर्ट करने वाले नहीं थे, लोग उसको गलत समझ, बहुत सारी चीज़ें थी। आज हकीकत खुल गई तो ईरान मकबूल हो गया और अमरीका तन्हा हो गया, है ना, चूंकि हकीकत यही थी, सामने आ गई। ठीक इसी तरीके से जंग से पहले लोग समझते

थे कि अमेरिका अदल इंसाफ का मरकज है, महवर है, सेंटर है, फुला है फुला है। आज जब हकीकत सामने आई तो लोग समझ गए कि जुल्म का मरकज है अमेरिका और इसराइल। अदल इंसाफ अगर कहीं से मिल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ ईरान से मिल सकता है। लिहाजा लोगों को ईरान से अदल इंसाफ की उम्मीद, और ये दुनिया की बुनियादी चीजों में से है। कुरान मजीद को पढ़े, अंबिया का बुनियादी मिशन ये है, अव्वल तो सबसे पहले तौहीद है, उसके असरात में यही है कि मसलन दुनिया को अदल इंसाफ से भर दें, दुनिया में अदल कायम करें, हर इंसान को उसका हक मिलना चाहिए, चाहे वो किसी तबके से हो, चाहे वो किसी मजहब व मिल्लत से हो, किसी मुल्क से हो। किसी के हक को जाया करने का किसी को कोई अख्तियार नहीं। यह पॉलिसी अमेरिका और इसराइल के पास नहीं थी, ये पॉलिसी ईरान के पास है, और इत्तेफाकन यही पॉलिसी है, और यही पॉलिसी उसकी कामयाबी का सबब भी है। दुनिया के सारे जालिमीन, चाहे वो छोटे पैमाने पर जुल्म करें या बड़े पैमाने पर जुल्म करें, इस बात को समझ लें कि उनका झूठ बहुत लंबे वक्त तक नहीं चलने वाला। जिस दिन भी उनका झूठ खुलेगा, इतना बड़ा मुल्क इतने बड़े पैमाने पर इंतजाम करके अपने आप को नहीं बचा सका, तो फिर आम लोग कैसे बचा सकेंगे अपने आप को? हकीकत खुल के सामने आएगी। एक दूसरी चीज, निजाम अदल बहुत ज्यादा, निजाम अदल को कोई कमजोर नहीं कर सकता, और निजाम जुल्म ज्यादा दिन तक चल नहीं सकता। लिहाजा निजाम जुल्म पे भरोसा करना यह सिर्फ हिमाकत है, उसके अलावा कुछ और नहीं है। एक बहुत अजीब चीज सामने आई है कि जो अभी एक वाकया सामने आया ट्रंप पे फायरिंग का, लोग उसको हंस के ही उड़ा रहे हैं। यहां पे भी बाज़ लोगों के चेहरे पे हंसी आ गई बहुत, यानी अगर तफसील में जाके उसकी तहलील करें तो आप भी सोच सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि किस तरीके से ये हो गया, कैसे वहां तक असलाह और अफराद, ये सारी चीजें, बहुत सारे सवाल हैं उसके पीछे कि जिस पे एनालाइज करने की और बात करने की जरूरत है। थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड से अगर देखा जाए, रोज़ अव्वल से ट्रंप अपने स्टेटमेंट्स को बदल रहा है ना, बहुत से बहुत आप कह सकते हैं रोज़ अव्वल नहीं, दूसरे दिन से, क्योंकि ज़्यादा पहले दिन जो स्टेटमेंट था दूसरे दिन उसको चेंज कर दिया। इसके आगे नहीं बढ़ सकते, जंग जब से शुरू हुई उसके स्टेटमेंट्स तब्दील हो रहे हैं। उन्होंने ये बात कही थी कि पिछली मरतबा खुद अमेरिका की मीडिया ने ही गिन के बताया था कि आदमी किस स्पीड से झूठ बोलता है। इत्तेफाकन अभी हमको किसी न्यूज़ में मालूम हुआ कि एक साल में ये आदमी 3,000 झूठ बोला है। जाहिर सी बात है कि गिनने वाले से कुछ हो सकता है, शायद छूट भी गया। एक साल में ये आदमी 3,000, जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड, छोटा मोटा रिकॉर्ड नहीं है। तो अब इतने झूठ बोलने वाला आदमी, इसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे? अक्ल के हिसाब से बार बार स्टेटमेंट चेंज करने वाला हारा हुआ माना जाता है, अपनी बात पे बाकी रहने वाला जीता हुआ माना जाता है। हिमास ने जो कहा था आज तक अपनी बात पे बाकी है, हिजबुल्ला ने जो कहा था आज तक अपनी बात पे बाकी है, अंसारुल्लाह ने जो कहा था आज तक अपनी बात पे बाकी है। ये सब तो छोटी छोटी कमेटियां हैं। लिहाजा बदरजे औला ईरान ने जो कहा था आज तक अपनी बात पे बाकी है। लेकिन मुकाबले में ट्रंप के, है ना, बाज़ औक़ात ये आप देखते होंगे होम्योपैथिक की दवा ये कम टाइम में खाई जाती है, एक घंटे पे, दो घंटे पे इतने टेबलेट ऐसी होता है, इसकी डोज शायद उससे ज़्यादा रही होंगी इसके झूठ की। ट्रंप के हर थोड़ी देर बाद एक नया झूठ, हर थोड़ी देर के बाद एक नया झूठ, इतने सारे झूठ इस बात की दलील है कि ये कितना कमज़ोर है, कितना अपने को लाचार महसूस कर रहा है, कितना ज़्यादा अपने आप को शिकस्त खुर्दा हारा हुआ महसूस कर रहा है। ऐसा इन सारे हालात से निकलने के बाद अब उसके पास ज़हरन कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि अपनी मजलूमियत को के साबित करने के अलावा किसी और रास्ते से बच सकता। लिहाजा लोगों के दरमियान मकबूलियत को पाने के लिए, अपने आप को मजलूम साबित करने के लिए, जैसा कि लोगों की तहलील एनालिसिस है, ये काम सामने आया फायरिंग वाला। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं